साथै चाँदीको भाडा बर्तन पनि पाइन्छ। जय बुद्ध ज्वेलरी बेसीसहर नगरपालिका साथ कृषि विकास बैंक नजिकै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा। सम्पर्क फोन नम्बर 0665240435 0665240475 मोबाइल नम्बर 9856045।